0: मार्केट पर आपको भी पैसा कमाना है, लेकिन आपके मन में बहुत सारी कंफ्यूजन है। सबसे पहले आपको करना क्या है, क्वाला पर आपको जाना है जहाँ लिखा हुआ है आस्क एनीथिंग अबाउट मार्केट्स। यहाँ पर आप अपने मन का कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, स्टॉक मार्केट से पैसे कैसे कमाएं। ये देखिए, इसने पूरा तरीका बता दिया है और ये भी बता दिया है कि आपको करना क्या। आपको क्वाला ने ये तो बता दिया कि कैसे आप स्टॉक मार्केट से पैसा कमा सकते हैं, लेकिन ये मेरा सवाल था क्वाला से। तो अब आप जाइए qualaintel.com पर एंड ट्राई इट योरसेल्फ।
1: अगर आप अभी 25 के हैं, 40 साल में रिटायर करेंगे, तो आपकी सैलरी के अकॉर्डिंग आप क्या इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो उसके लिए सिंपली मैं आ जाऊंगी qualaintel.com पर। क्वाला में अभी 25 साल की हूँ, 40 साल में मैं रिटायरमेंट प्लान कर रही हूँ और मेरी सैलरी 60,000 है। तो ऐसे में आप मुझे एक इन्वेस्टमेंट प्लान बताइए कि आगे जाकर क्या सेविंग्स हो सकती है मेरे लिए। क्वाला ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि आप कैसे अपने पैसे को डिवाइड कर सकते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के जरिए ये दिखाया गया। तो आप सिर्फ मेरे बोलने पर मत जाइए, ट्राई इट योरसेल्फ।
2: Campaigns, elections, alliances, controversies, and power play. Stories that analyze global and domestic politics. A dedicated show with varied perspectives, expert take, citizens' voices, detailed ground reports, and in-depth coverage from political corridors of the world. This is Race to Power. Only on WeOn.

0: अगर आप अभी 25 के हैं, 40 साल में रिटायर करेंगे तो आपकी सैलरी के अकॉर्डिंग आप क्या इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो उसके लिए सिंपली मैं आ जाऊंगी qualaintel.com पर। क्वाला में अभी 25 साल की हूँ, 40 साल में मैं रिटायरमेंट प्लान कर रही हूँ और मेरी सैलरी 60,000 है। वैसे में आप मुझे एक इन्वेस्टमेंट प्लान बताइए कि आगे जाकर क्या सेविंग्स हो सकती है मेरे लिए। क्वाला ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि आप कैसे अपने पैसे को डिवाइड कर सकते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के जरिए ये दिखाया गया, तो आप सिर्फ मेरे बोलने पर मत जाइए, ट्राई इट योरसेल्फ।
1: स्टॉक मार्केट से जुड़ा हुआ कोई भी आपके पास सवाल है तो आप इस प्लेटफॉर्म क्वाला से पूछ सकते हैं। मेरे पास 10 लाख रुपए है, मैं स्टॉक मार्केट में कहां लगाऊं? एक ही विंडो में पूरे मेरे स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टमेंट की कहानी बता दी, मतलब एक पूरी कुंडली क्रिएट कर दी। ये तो मेरा सवाल है, आप अपनी किसी भी कंफर्टेबल लैंग्वेज में सवाल पूछ सकते हैं।

अगर आप अभी 25 के हैं, 40 साल में रिटायर करेंगे तो आपकी सैलरी के अकॉर्डिंग आप क्या इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो उसके लिए सिंपली मैं आ जाऊंगी qualaintel.com पर। क्वाला में अभी 25 साल की हूँ, 40 साल में मैं रिटायरमेंट प्लान कर रही हूँ और मेरी सैलरी 60,000 है। वैसे में आप मुझे एक इन्वेस्टमेंट प्लान बताइए कि आगे जाकर क्या सेविंग्स हो सकती है मेरे लिए। क्वाला ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि आप कैसे अपने पैसे को डिवाइड कर सकते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के जरिए ये दिखाया गया। तो आप सिर्फ मेरे बोलने पर मत जाइए, ट्राई इट योरसेल्फ।

0: स्टॉक मार्केट से जुड़ा हुआ कोई भी आपके पास सवाल है तो आप इस प्लेटफॉर्म क्वाला से पूछ सकते हैं। मेरे पास 10 लाख रुपए है, मैं स्टॉक मार्केट में कहां लगाऊं? एक ही विंडो में पूरे मेरे स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टमेंट की कहानी बता दी, मतलब एक पूरी कुंडली क्रिएट कर दी। ये तो मेरा सवाल है, आप अपनी किसी भी कंफर्टेबल लैंग्वेज में सवाल पूछ सकते हैं।
1: Know more, understand better, think ahead. Hello and a very warm welcome. You are watching Gravitas with me, Molly Gambhir. Get the facts, not the bombast. On the 26th of March, dynamic pricing, Baloch separatists. Gravitas cuts out the clutter. Gravitas keeps calm when others scream. Gravitas brings news to life. Weekdays, 9 p.m. IST, 3:30 p.m. GMT. Gravitas. Seeing is believing.

0: character that you like and, you know, be yourself and the tricks and treats with it. It's a scary time of year, but it's really fun.
1: Campaigns, elections, alliances, controversies, and power play. Stories that analyze global and domestic politics. A dedicated show with varied perspectives, expert take, citizens' voices, detailed ground reports, and in-depth coverage from political corridors of the world. This is Race to Power. Only on WeOn.
2: स्टॉक मार्केट पर आपको भी पैसा कमाना है लेकिन आपके मन में बहुत सारी कंफ्यूजन है. सबसे पहले आपको करना क्या है, क्वाला पर आपको जाना है जहां लिखा हुआ है आस्क एनीथिंग अबाउट मार्केट्स. यहां पर आप अपने मन का कोई भी सवाल पूछ सकते हैं. स्टॉक मार्केट से पैसे कैसे कमाएं, ये देखिए इसने पूरा तरीका बता दिया है और ये भी बता दिया है कि आपको करना क्या. आपको क्वाला ने ये तो बता दिया कि कैसे आप स्टॉक मार्केट से पैसा कमा सकते हैं, लेकिन ये मेरा सवाल था क्वाला से. तो अब आप जाइए क्वाला इंटेल.com पर एंड ट्राई इट योरसेल्फ.

0: गाइस, मेरा तीसरा स्टोर अब एक्सपेंशन के लिए ना एक बैंक चाहिए. एनी सजेशंस?
1: जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक.
0: स्मॉल
2: स्मॉल, अब पूरी पिक्चर देख लो. लोन ऑप्शंस बिग, सेविंग्स और एफडी पे इंटरेस्ट बिग, ब्रांच नेटवर्क बिग. अगर स्मॉल होता तो मैं साइड में होता. और जीवन, नथिंग स्मॉल अबाउट अस.
3: SBI Celebrations Unlimited. इस festive season को बनाएं special. Car loan, personal loan, gold loan और loan against mutual funds पे special offers के साथ.
4: अगर आप अभी 25 के हैं, 40 साल में रिटायर करेंगे तो आपकी सैलरी के अकॉर्डिंग आप क्या इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो उसके लिए सिंपली मैं आ जाऊंगी qualaintel.com पर. क्वाला में अभी 25 साल की हूँ, 40 साल में मैं रिटायरमेंट प्लान कर रही हूँ और मेरी सैलरी 60,000 है. तो ऐसे में आप मुझे एक इन्वेस्टमेंट प्लान बताइए कि आगे जाकर क्या सेविंग्स हो सकती है मेरे लिए. क्वाला ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि आप कैसे अपने पैसे को डिवाइड कर सकते हैं. ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के जरिए ये दिखाया गया, तो आप सिर्फ मेरे बोलने पर मत जाइए. ट्राई इट योरसेल्फ.
5: This is Defense Pulse.
6: It's not the same world that it used to be 10 years back. Drones are how the wars are being fought right now.
7: But the role of infantry, the role of foot soldiers is not going to be changing, and neither is it changing in the Ukraine-Russia conflict.
8: Man unmanned mission together, very much like how the aircrafts and the drones work. They both have specific tasks that is there, and that's the naval battlefield that it is going to be.
9: So training our defense personnel is becoming more and more critical to adapt to the ever-changing battlefield. Data, software, algorithms are increasingly becoming key instruments to the warfare.
10: To sustain an aircraft, you need to be able to manufacture parts locally.

0: time of the year that you really get to dress up in whatever type of character that you like and, you know, be yourself and the tricks and treats with it. It's a scary time of year, but it's really fun.
1: स्टॉक मार्केट से जुड़ा हुआ कोई भी आपके पास सवाल है तो आप इस प्लेटफॉर्म क्वाला से पूछ सकते हैं. मेरे पास 10 लाख रुपए हैं, मैं स्टॉक मार्केट में कहां लगाऊं? एक ही विंडो में

मार्केट पर आपको भी पैसा कमाना है लेकिन आपके मन में बहुत सारी कंफ्यूजन है, सबसे पहले आपको करना क्या है, क्वाला पर आपको जाना है जहां लिखा हुआ है आस्क एनीथिंग अबाउट मार्केट्स। यहां पर आप अपने मन का कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। स्टॉक मार्केट

0: British performers Naomi Aki and Tom Rees Harris attended the high-profile launch of the dark psychological thriller Clayface in London. The DC Universe, which is known for characters like Batman, Superman and Wonder Woman, is going dark with Clayface. This marks their latest reinvention under James Gunn. Sandra Allaire captivated attendees at the official UK premiere of Fatherland in London. Set in 1949, Fatherland follows a man who visits Germany for the first time since fleeing the Nazis to accept the Goethe Prize, named after another Germany's greatest writers. The movie earned Polyovsky's his second Cannes Best Director prizes. The first trailer for a sweeping multi-part drama titled The Great Hits is out. The series documents the monumental boxing victories and civil rights activism of Muhammad Ali. The series draws upon unpublished personal diaries and retrospective family interviews. The biographical series offers a fresh glimpse into the legacy of the sports star outside the sporting ring. Well, that's all the time that we have on this edition of Speed News. I'm Kanishka Sarkar. Thank you for watching. More news and updates will follow after a very short break. Stay tuned to Beyond World as well.
1: Guys, mera teesra store. Ab expansion ke liye na ek bank chahiye. Any suggestions? Jeevan small finance bank. Small.
2: Small.
3: अब पूरी पिक्चर देख लो. लोन ऑप्शंस बिग,
4: सेविंग्स और एफडी पे इंटरेस्ट बिग, ब्रांच नेटवर्क बिग.
3: अगर स्मॉल होता तो मैं साड़ में होता. और जीवन, नथिंग स्मॉल अबाउट अस.
5: SBI Celebrations Unlimited. इस festive season को बनाए special car loan, personal loan, gold loan और loan against mutual funds पे special offers के साथ.
6: The world is changing. The headlines are shifting. The future is being written every day. From around the continents, Asia and India, WEON brings you the stories that shape our world. Grounded, geopolitical, global. WEON. World is one.
7: Maddy, I need to open a savings account.
8: Arey, Ujjivan Small Finance Bank ma khol lo.
7: Small bank?
8: Small. Privilege savings account, Garima savings account, Maxima business edge current account, business Maxima business privilege, RDF, there's nothing small about them.
7: Okay.
3: Oh, Jeevan, nothing small about us.
9: Stock market se juda hua koi bhi aapke paas sawal hai, to aap is platform Quala se pooch sakte hain. Mere paas 10 lakh rupaye hain. Main stock market mein kahan lagaun? Ek hi window mein pure mere stock market ke investment ki कहानी बता दी, मतलब एक पूरी कुंडली क्रिएट कर दी. ये तो मेरा सवाल है. आप अपनी किसी भी कंफर्टेबल लैंग्वेज में सवाल पूछ सकते हैं.
10: स्टॉक मार्केट पर आपको भी पैसा कमाना है, लेकिन आपके मन में बहुत सारी कंफ्यूजन है. सबसे पहले आपको करना क्या है, क्वाला पर आपको जाना है, जहां लिखा हुआ है आस्क एनीथिंग अबाउट मार्केट्स. यहां पर आप अपने मन का कोई भी सवाल पूछ सकते हैं. स्टॉक मार्केट से पैसे कैसे कमाएं, ये देखिए इसने पूरा तरीका बता दिया है. और ये भी बता दिया है कि आपको करना क्या. आपको क्वाला ने ये तो बता दिया कि कैसे आप स्टॉक मार्केट से पैसा कमा सकते हैं, लेकिन ये मेरा सवाल था क्वाला से. तो अब आप जाइए क्वाला इंटेल.com पर एंड ट्राई इट योरसेल्फ.

0: यार लोन भूल गया मैरी सजेस्ट अ गुड बैंक ना
1: उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक
0: स्मॉल फाइनेंस बैंक
1: स्मॉल वर्किंग कैपिटल लोन होम लोन लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी माइक्रो मॉर्गेज लोन गोल्ड लोन प्री ओन कार लोन टू व्हीलर लोन
2: देयर इज नथिंग स्मॉल अबाउट
3: उज्जीवन नथिंग स्मॉल अबाउट अस
4: SBI Celebrations Unlimited. इस festive season को बनाए special. Car loan, personal loan, gold loan और loan against mutual funds पे special offers के साथ.
5: The world is changing. The headlines are shifting. The future is being written every day. From around the continents, Asia and India, WEON brings you the stories that shape our world. Grounded, geopolitical, global. WEON. World is one.
6: मैडी आई नीड टू ओपन अ सेविंग्स अकाउंट
1: अरे उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में खोल लो
6: स्मॉल बैंक
1: स्मॉल प्रिविलेज सेविंग्स अकाउंट गरिमा सेविंग्स अकाउंट मैक्सिमा बिजनेस एज करंट अकाउंट मैक्सिमा बिजनेस प्रिविलेज आरडीए देयर इज नथिंग स्मॉल अबाउट देम
6: ओके
3: उज्जीवन नथिंग स्मॉल अबाउट अस
7: स्टॉक मार्केट पर आपको भी पैसा कमाना है लेकिन आपके मन में बहुत सारी कंफ्यूजन है सबसे पहले आपको करना क्या है क्वाला पर आपको जाना है जहां लिखा हुआ है आस्क एनीथिंग अबाउट मार्केट्स यहां पर आप अपने मन का कोई भी सवाल पूछ सकते हैं स्टॉक मार्केट से पैसे कैसे कमाएं ये देखिए इसने पूरा तरीका बता दिया है और ये भी बता दिया है कि आपको करना क्या आपको क्वाला ने ये तो बता दिया कि कैसे आप स्टॉक मार्केट से पैसा कमा सकते हैं लेकिन ये मेरा सवाल था क्वाला से तो अब आप जाइए qualaintel.com पर एंड ट्राई इट योरसेल्फ
8: Know more, understand better, think ahead. Hello and a very warm welcome. You are watching Gravitas with me, Molly Gambhir. Get the facts, not the bombast. On the 26th of March, dynamic pricing, Baloch separatists, Gravitas cuts out the clutter. Gravitas keeps calm when others scream. Gravitas brings news to life. Weekdays, 9 p.m. IST, 3:30 p.m. GMT. Gravitas. Seeing is believing.

मार्केट से जुड़ा हुआ कोई भी आपके पास सवाल है तो आप इस प्लेटफॉर्म क्वाला से पूछ सकते हैं। मेरे पास 10 लाख रुपए हैं, मैं स्टॉक मार्केट में कहां

0: यार लोन भूल गया
1: मैरी
0: जस्ट अ गुड बैंक ना
2: उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक
0: स्मॉल फाइनेंस बैंक
2: स्मॉल वर्किंग कैपिटल लोन होम लोन लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी माइक्रो मॉर्गेज लोन गोल्ड लोन प्री ओन कार लोन टू व्हीलर लोन
3: देयर्स नथिंग स्मॉल अबाउट
4: अस उज्जीवन नथिंग स्मॉल अबाउट अस
5: SBI Celebrations Unlimited. इस festive season को बनाएं special. Car loan, personal loan, gold loan और loan against mutual funds पे special offers के साथ.
6: The world is changing. The headlines are shifting. The future is being written every day. From around the continents, Asia and India, WEON brings you the stories that shape our world. Grounded, geopolitical, global. WEON. World is one.
7: Maddie, I need to open a savings account.
2: अरे उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में खोल लो.
7: स्मॉल बैंक
2: स्मॉल प्रिविलेज सेविंग्स अकाउंट गरिमा सेविंग्स अकाउंट मैक्सिमा बिजनेस एज करंट अकाउंट बिजनेस मैक्सिमा बिजनेस प्रिविलेज आरडीएफ देयर इज नथिंग स्मॉल अबाउट देम
7: ओके
4: उज्जीवन नथिंग स्मॉल अबाउट अस

अगर आप अभी 25 के हैं, 40 साल में रिटायर करेंगे तो आपकी सैलरी के अकॉर्डिंग आप क्या इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो उसके लिए सिंपली मैं आ जाऊंगी qualaintel.com पर। क्वाला में अभी 25 साल की हूँ, 40 साल में मैं रिटायरमेंट प्लान कर रही हूँ और मेरी सैलरी 60,000 है। वैसे में आप मुझे एक इन्वेस्टमेंट प्लान बताइए कि आगे जाकर क्या सेविंग्स हो सकती है मेरे लिए। क्वाला ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि आप कैसे अपने पैसे को डिवाइड कर सकते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के जरिए ये दिखाया गया। तो आप सिर्फ मेरे बोलने पर मत जाइए, ट्राई इट योरसेल्फ।

0: Well, that is all we had in this edition for you, but don't go anywhere. News and updates will follow on the other side. You're watching Beyond World is One. Stay tuned.
1: स्टॉक मार्केट पर आपको भी पैसा कमाना है, लेकिन आपके मन में बहुत सारी कंफ्यूजन है। सबसे पहले आपको करना क्या है, क्वाला पर आपको जाना है, जहां लिखा हुआ है आस्क एनीथिंग अबाउट मार्केट्स। यहां पर आप अपने मन का कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, स्टॉक मार्केट से पैसे कैसे कमाएं। ये देखिए, इसने पूरा तरीका बता दिया है और ये भी बता दिया है कि आपको करना क्या। आपको क्वाला ने ये तो बता दिया कि कैसे आप स्टॉक मार्केट से पैसा कमा सकते हैं, लेकिन ये मेरा सवाल था क्वाला से। तो अब आप जाइए क्वाला intel.com पर एंड ट्राई इट योरसेल्फ।

0: elections, alliances, controversies, and power play. Stories that analyze global and domestic politics. A dedicated show with varied perspectives, expert take, citizens' voices, detailed ground reports, and in-depth coverage from political corridors of the world. This is Race to Power, only on WEON.
1: Know more, understand better, think ahead. Hello and a very warm welcome. You are watching Gravitas with me, Molly Gambhir. Get the facts, not the bombast. On the 26th of March, dynamic pricing, Baloch separatists. Gravitas cuts out the clutter. Gravitas keeps calm when others scream. Gravitas brings news to life. Weekdays, 9 p.m. IST, 3:30 p.m. GMT. Gravitas. Seeing is believing.
2: स्टॉक मार्केट से जुड़ा हुआ कोई भी आपके पास सवाल है तो आप इस प्लेटफॉर्म क्वाला से पूछ सकते हैं। मेरे पास 10 लाख रुपए हैं, मैं स्टॉक मार्केट में कहां लगाऊं? एक ही विंडो में पूरे मेरे स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टमेंट की कहानी बता दी, मतलब एक पूरी कुंडली क्रिएट कर दी। ये तो मेरा सवाल है, आप अपनी किसी भी कंफर्टेबल लैंग्वेज में सवाल पूछ सकते हैं।

0: मौके से जुड़ा हुआ कोई भी आपके पास सवाल है तो आप इस प्लेटफॉर्म क्वाला से पूछ सकते हैं। मेरे पास 10 लाख रुपए हैं, मैं स्टॉक मार्केट में कहां लगाऊं? एक ही विंडो में पूरे मेरे स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टमेंट की कहानी बता दी, मतलब एक पूरी कुंडली क्रिएट कर दी। ये तो मेरा सवाल है, आप अपनी किसी भी कंफर्टेबल लैंग्वेज में सवाल पूछ सकते हैं।
1: स्टॉक मार्केट पर आपको भी पैसा कमाना है लेकिन आपके मन में बहुत सारी कंफ्यूजन है, सबसे पहले आपको करना क्या है, क्वाला पर आपको जाना है जहां लिखा हुआ है आस्क एनीथिंग अबाउट मार्केट्स। यहां पर आप अपने मन का कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, स्टॉक मार्केट से पैसे कैसे कमाएं। ये देखिए, इसने पूरा तरीका बता दिया है और ये भी बता दिया है कि आपको करना क्या है। आपको क्वाला ने ये तो बता दिया कि कैसे आप स्टॉक मार्केट से पैसा कमा सकते हैं, लेकिन ये मेरा सवाल था क्वाला से। तो अब आप जाइए qualaintel.com पर एंड ट्राई इट योरसेल्फ। अगर आप अभी 25 के हैं, 40 साल में रिटायर करेंगे तो आपकी सैलरी के अकॉर्डिंग आप क्या इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो उसके लिए सिंपली मैं आ जाऊंगी qualaintel.com पर। क्वाला में अभी 25 साल की हूँ, 40 साल में मैं रिटायरमेंट प्लान कर रही हूँ और मेरी सैलरी 60,000 है। वैसे में आप मुझे एक इन्वेस्टमेंट प्लान बताइए कि आगे जाकर क्या सेविंग्स हो सकती है मेरे लिए। क्वाला ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि आप कैसे अपने पैसे को डिवाइड कर सकते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के जरिए ये दिखाया गया, तो आप सिर्फ मेरे बोलने पर मत जाइए, ट्राई इट योरसेल्फ।
2: Campaigns, elections, alliances, controversies, and power play. Stories that analyze global and domestic politics. A dedicated show with varied perspectives, expert take, citizens' voices, detailed ground reports, and in-depth coverage from political corridors of the world.

0: इजराइल।
1: स्टॉक मार्केट से जुड़ा हुआ कोई भी आपके पास सवाल है तो आप इस प्लेटफॉर्म क्वाला से पूछ सकते हैं। मेरे पास 10 लाख रुपए है, मैं स्टॉक मार्केट में कहां लगाऊं? एक ही विंडो में पूरे मेरे स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टमेंट की कहानी बता दी, मतलब एक पूरी कुंडली क्रिएट कर दी। ये तो मेरा सवाल है, आप अपनी किसी भी कंफर्टेबल लैंग्वेज में सवाल पूछ सकते हैं।

अगर आप अभी 25 के हैं, 40 साल में रिटायर करेंगे, तो आपकी सैलरी के अकॉर्डिंग आप क्या इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए सिंपली मैं आ जाऊंगी qualaintel.com पर। क्वाला में अभी 25 साल की हूँ, 40 साल में मैं रिटायरमेंट प्लान कर रही हूँ और मेरी सैलरी 60,000 है। वैसे में आप मुझे एक इन्वेस्टमेंट प्लान बताइए कि आगे जाकर क्या सेविंग्स हो सकती है मेरे लिए। क्वाला ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि आप कैसे अपने पैसे को डिवाइड कर सकते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के जरिए ये दिखाया गया, तो आप सिर्फ मेरे बोलने पर मत जाइए, ट्राई इट योरसेल्फ।

0: time of the year that you really get to dress up in whatever type of character that you like and, you know, be yourself and the tricks and treats with it. It's a scary time of year, but it's really fun.
1: Campaigns, elections, alliances, controversies, and power play. Stories that analyze global and domestic politics. A dedicated show with varied perspectives, expert take, citizens' voices, detailed ground reports, and in-depth coverage from political corridors of the world. This is Race to Power, only on WEON.
2: स्टॉक मार्केट पर आपको भी पैसा कमाना है लेकिन आपके मन में बहुत सारी कंफ्यूजन है. सबसे पहले आपको करना क्या है, क्वाला पर आपको जाना है जहां लिखा हुआ है आस्क एनीथिंग अबाउट मार्केट्स. यहां पर आप अपने मन का कोई भी सवाल पूछ सकते हैं. स्टॉक मार्केट से पैसे कैसे कमाएं, ये देखिए इसने पूरा तरीका बता दिया है और ये भी बता दिया है कि आपको करना क्या. आपको क्वाला ने ये तो बता दिया कि कैसे आप स्टॉक मार्केट से पैसा कमा सकते हैं, लेकिन ये मेरा सवाल था क्वाला से. तो अब आप जाइए क्वाला intel.com पर एंड ट्राई इट योरसेल्फ.

0: अगर आप अभी 25 के हैं, 40 साल में रिटायर करेंगे तो आपकी सैलरी के अकॉर्डिंग आप क्या इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो उसके लिए सिंपली मैं आ जाऊंगी qualaintel.com पर। क्वाला में अभी 25 साल की हूँ, 40 साल में मैं रिटायरमेंट प्लान कर रही हूँ और मेरी सैलरी 60,000 है। वैसे में आप मुझे एक इन्वेस्टमेंट प्लान बताइए कि आगे जाकर क्या सेविंग्स हो सकती है मेरे लिए। क्वाला ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि आप कैसे अपने पैसे को डिवाइड कर सकते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के जरिए ये दिखाया गया, तो आप सिर्फ मेरे बोलने पर मत जाइए, ट्राई इट योरसेल्फ।
1: दिस इज डिफेंस पल्स।
2: It's not the same world that it used to be 10 years back. Drones are how the wars are being fought right now.
3: But the role of infantry, the role of foot soldiers is not going to be changing, and neither is it changing in the Ukraine-Russia conflict.
4: Man-unmanned mission together, very much like how the aircrafts and the drones work. They both have specific tasks that is there, and that's the naval battlefield that it is going to be.
5: So training our defense personnel is becoming more and more critical to adapt to the ever-changing battlefield. Data, software, algorithms are increasingly becoming key instruments to the warfare.
6: To sustain an aircraft, you need to be able to manufacture parts locally.
7: Campaigns. Elections, alliances, controversies, and power play. Stories that analyze global and domestic politics. A dedicated show with varied perspectives, expert take, citizens' voices, detailed ground reports, and in-depth coverage from political corridors of the world. This is Race to Power, only on WEON.
8: स्टॉक मार्केट से जुड़ा हुआ कोई भी आपके पास सवाल है तो आप इस प्लेटफॉर्म क्वाला से पूछ सकते हैं। मेरे पास 10,00,000 रुपए हैं, मैं स्टॉक मार्केट में कहां लगाऊं? एक ही विंडो में पूरे मेरे स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टमेंट की कहानी बता दी, मतलब एक पूरी कुंडली क्रिएट कर दी। ये तो मेरा सवाल है, आप अपनी किसी भी कंफर्टेबल लैंग्वेज में सवाल पूछ सकते हैं।

अगर आप अभी 25 के हैं, 40 साल में रिटायर करेंगे तो आपकी सैलरी के अकॉर्डिंग आप क्या इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो उसके लिए सिंपली मैं आ जाऊंगी qualaintel.com पर। क्वाला में अभी 25 साल की हूँ, 40 साल में मैं रिटायरमेंट प्लान कर रही हूँ और मेरी सैलरी 60,000 है। वैसे में आप मुझे एक इन्वेस्टमेंट प्लान बताइए कि आगे जाकर क्या सेविंग्स हो सकती है मेरे लिए। क्वाला ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि आप कैसे अपने पैसे को डिवाइड कर सकते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के जरिए ये दिखाया गया। तो आप सिर्फ मेरे बोलने पर मत जाइए, ट्राई इट योरसेल्फ।

0: know more, understand better, think ahead. Hello and a very warm welcome. You are watching Gravitas with me, Molly Gambhir. Get the facts, not the bombast. On the 26th of March, dynamic pricing, Baloch separatists. Gravitas cuts out the clutter. Gravitas keeps calm when others scream. Gravitas brings news to life. Weekdays, 9 p.m. IST, 3:30 p.m. GMT. Gravitas. Seeing is believing.
1: Elections, alliances, controversies, and power play. Stories that analyze global and domestic politics. A dedicated show with varied perspectives, expert take, citizens' voices, detailed ground reports, and in-depth coverage from political corridors of the world. This is Race to Power, only on WEON.
2: स्टॉक मार्केट पर आपको भी पैसा कमाना है लेकिन आपके मन में बहुत सारी कंफ्यूजन है. सबसे पहले आपको करना क्या है, क्वाला पर आपको जाना है जहां लिखा हुआ है आस्क एनीथिंग अबाउट मार्केट्स. यहां पर आप अपने मन का कोई भी सवाल पूछ सकते हैं. स्टॉक मार्केट से पैसे कैसे कमाएं, ये देखिए इसने पूरा तरीका बता दिया है और ये भी बता दिया है कि आपको करना क्या. आपको क्वाला ने ये तो बता दिया कि कैसे आप स्टॉक मार्केट से पैसा कमा सकते हैं, लेकिन ये मेरा सवाल था क्वाला से. तो अब आप जाइए क्वाला इंटेल.com पर एंड ट्राई इट योरसेल्फ.

0: यार लोन भूल गया मैरी सजेस्ट बैंक ना
1: उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक
0: स्मॉल
1: वर्किंग कैपिटल लोन होम लोन लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी माइक्रो मॉर्गेज लोन गोल्ड लोन प्री ओन कार लोन टू व्हीलर लोन
2: देयर इज नथिंग स्मॉल अबाउट
3: अस उज्जीवन नथिंग स्मॉल अबाउट अस
4: SBI Celebrations Unlimited. इस festive season को बनाए special car loan, personal loan, gold loan और loan against mutual funds पे special offers के साथ.
5: The world is changing. The headlines are shifting. The future is being written every day. From around the continents, Asia and India, WEON brings you the stories that shape our world. Grounded, geopolitical, global. WEON. World is one.
6: Maddie, I need to open a savings account.
1: अरे उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में खोल लो.
6: स्मॉल बैंक.
1: स्मॉल. प्रिविलेज सेविंग्स अकाउंट, गरिमा सेविंग्स अकाउंट, मैक्सिमा बिजनेस एज करंट अकाउंट, मैक्सिमा बिजनेस प्रिविलेज आरडी. There's nothing small about them.
6: Okay.
3: उज्जीवन, nothing small about us.
7: अगर आप अभी 25 के हैं 40 साल में रिटायर करेंगे तो आपकी सैलरी के अकॉर्डिंग आप क्या इन्वेस्ट कर सकते हैं तो उसके लिए सिंपली मैं आ जाऊंगी qualaintel.com पर. क्वाला में अभी 25 साल की हूँ 40 साल में मैं रिटायरमेंट प्लान कर रही हूँ और मेरी सैलरी 60,000 है. वैसे में आप मुझे एक इन्वेस्टमेंट प्लान बताइए कि आगे जाकर क्या सेविंग्स हो सकती है मेरे लिए. क्वाला ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि आप कैसे अपने पैसे को डिवाइड कर सकते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के जरिए ये दिखाया गया. तो आप सिर्फ मेरे बोलने पर मत जाइए. ट्राई इट योरसेल्फ.
8: स्टॉक मार्केट पर आपको भी पैसा कमाना है लेकिन आपके मन में बहुत सारी कंफ्यूजन है. सबसे पहले आपको

0: करना क्या है, कॉलर पर आपको जाना है जहां लिखा हुआ है आस्क एनीथिंग अबाउट मार्केट्स। यहां पर आप अपने मन का कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, स्टॉक मार्केट से पैसे कैसे कमाएं। ये देखिए, इसने पूरा तरीका बता दिया है और ये भी बता दिया है कि आपको करना क्या है। आपको कॉलर ने ये तो बता दिया कि कैसे आप स्टॉक मार्केट से पैसा कमा सकते हैं, लेकिन ये मेरा सवाल था कॉलर से। तो अब आप जाइए कॉलर.intel.com पर एंड ट्राई इट योरसेल्फ।
1: स्टॉक मार्केट से जुड़ा हुआ कोई भी आपके पास सवाल है तो आप इस प्लेटफॉर्म क्वाला से पूछ सकते हैं। मेरे पास 10 लाख रुपए हैं, मैं स्टॉक मार्केट में कहां लगाऊं? एक ही विंडो में पूरे मेरे स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टमेंट की कहानी बता दी, मतलब एक पूरी कुंडली क्रिएट कर दी। ये तो मेरा सवाल है, आप अपनी किसी भी कंफर्टेबल लैंग्वेज में सवाल पूछ सकते हैं।
2: Know more, understand better, think ahead. Hello and a very warm welcome. You are watching Gravitas with me, Molly Gambhir. Get the facts, not the bombast. On the 26th of March, dynamic pricing, Baloch separatists. Gravitas cuts out the clutter. Gravitas keeps calm when others scream. Gravitas brings news to life.

0: यार लोन भूल गया मैरी सजेस्ट अ गुड बैंक ना
1: उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक
0: स्मॉल फाइनेंस बैंक
1: स्मॉल वर्किंग कैपिटल लोन होम लोन लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी माइक्रो मॉर्गेज लोन गोल्ड लोन प्री ओन कार लोन टू व्हीलर लोन
2: देयर इज नथिंग स्मॉल अबाउट
3: उज्जीवन नथिंग स्मॉल अबाउट अस
4: SBI Celebrations Unlimited. इस festive season को बनाएं special. Car loan, personal loan, gold loan और loan against mutual funds पे special offers के साथ.
5: The world is changing. The headlines are shifting. The future is being written every day. From around the continents, Asia and India, WEON brings you the stories that shape our world. Grounded, geopolitical, global. WEON. World is one.
6: मैडी आई नीड टू ओपन अ सेविंग्स अकाउंट
1: अरे उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में खोल लो
6: स्मॉल बैंक
1: स्मॉल प्रिविलेज सेविंग्स अकाउंट गरिमा सेविंग्स अकाउंट मैक्सिमा बिजनेस एज करंट अकाउंट मैक्सिमा बिजनेस प्रिविलेज आरडीएफ देयर इज नथिंग स्मॉल अबाउट देम
6: ओके
3: उज्जीवन नथिंग स्मॉल अबाउट अस

0: year that you really get to dress up in whatever type of character that you like and, you know, be yourself and the tricks and treats with it. It's a scary time of year, but it's really fun.
1: स्टॉक मार्केट पर आपको भी पैसा कमाना है लेकिन आपके मन में बहुत सारी कंफ्यूजन है. सबसे पहले आपको करना क्या है, क्वाला पर आपको जाना है जहां लिखा हुआ है आस्क एनीथिंग अबाउट मार्केट्स. यहां पर आप अपने मन का कोई भी सवाल पूछ सकते हैं. स्टॉक मार्केट से पैसे कैसे कमाएं, ये देखिए इसने पूरा तरीका बता दिया है और ये भी बता दिया है कि आपको करना क्या. आपको क्वाला ने ये तो बता दिया कि कैसे आप स्टॉक मार्केट से पैसा कमा सकते हैं, लेकिन ये मेरा सवाल था क्वाला से. तो अब आप जाइए qualaintel.com पर एंड ट्राई इट योरसेल्फ.
2: Elections, alliances, controversies, and power play. Stories that analyze global and domestic politics. A dedicated show with varied perspectives. Expert take. Citizens' voices.

0: मार्केट पर आपको भी पैसा कमाना है, लेकिन आपके मन में बहुत सारी कंफ्यूजन है। सबसे पहले आपको करना क्या है, क्वाला पर आपको जाना है जहां लिखा हुआ है आस्क एनीथिंग अबाउट मार्केट्स। यहां पर आप अपने मन का कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, स्टॉक मार्केट से पैसे कैसे कमाएं। ये देखिए, इसने पूरा तरीका बता दिया है और ये भी बता दिया है कि आपको करना क्या। आपको क्वाला ने ये तो बता दिया कि कैसे आप स्टॉक मार्केट से पैसा कमा सकते हैं, लेकिन ये मेरा सवाल था क्वाला से। तो अब आप जाइए qualaintel.com पर एंड ट्राई इट योरसेल्फ। स्टॉक मार्केट से जुड़ा हुआ कोई भी आपके पास सवाल है तो आप इस प्लेटफॉर्म क्वाला से पूछ सकते हैं। मेरे पास 10 लाख रुपए हैं, मैं स्टॉक मार्केट में कहां लगाऊं? एक ही विंडो में पूरे मेरे स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टमेंट की कहानी बता दी, मतलब एक पूरी कुंडली क्रिएट कर दी। ये तो मेरा सवाल है, आप अपनी किसी भी कंफर्टेबल लैंग्वेज में सवाल पूछ सकते हैं।
1: Know more, understand better, think ahead. Hello and a very warm welcome. You are watching Gravitas with me, Molly Gambhir. Get the facts, not the bombast. On the 26th of March, dynamic pricing, Baloch separatists,

0: पर आपको जाना है जहाँ लिखा हुआ है आस्क एनीथिंग अबाउट मार्केट्स। यहाँ पर आप अपने मन का कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, स्टॉक मार्केट से पैसे कैसे कमाएं। ये देखिए, इसने पूरा तरीका बता दिया है और ये भी बता दिया है कि आपको करना क्या। आपको कॉला ने ये तो बता दिया कि कैसे आप स्टॉक मार्केट से पैसा कमा सकते हैं, लेकिन ये मेरा सवाल था कॉला से। तो अब आप जाइए कॉलाइंटेल.com पर एंड ट्राई इट योरसेल्फ।
1: Elections, alliances, controversies, and power play. Stories that analyze global and domestic politics. A dedicated show with varied perspectives, expert take, citizens' voices, detailed ground reports, and in-depth coverage from political corridors of the world. This is Race to Power, only on WEON.

0: लेकिन
1: स्टॉक मार्केट से जुड़ा हुआ कोई भी आपके पास सवाल है तो आप इस प्लेटफॉर्म क्वाला से पूछ सकते हैं। मेरे पास 10 लाख रुपए है, मैं स्टॉक मार्केट में कहां लगाऊं? एक ही विंडो में पूरे मेरे स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टमेंट की कहानी बता दी, मतलब एक पूरी कुंडली क्रिएट कर दी। ये तो मेरा सवाल है, आप अपनी किसी भी कंफर्टेबल लैंग्वेज में सवाल पूछ सकते हैं।

0: मार्केट से जुड़ा हुआ कोई भी आपके पास सवाल है तो आप इस प्लेटफॉर्म क्वाला से पूछ सकते हैं। मेरे पास 10 लाख रुपए हैं, मैं स्टॉक मार्केट में कहां लगाऊं? एक ही विंडो में पूरे मेरे स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टमेंट की कहानी बता दी, मतलब एक पूरी कुंडली क्रिएट कर दी। ये तो मेरा सवाल है, आप अपनी किसी भी कंफर्टेबल लैंग्वेज में सवाल पूछ सकते हैं।
1: नो मोर अंडरस्टैंड बेटर थिंक अहेड। हेलो एंड अ वेरी वार्म वेलकम, यू आर वॉचिंग ग्रेविटास विथ

0: Daddy, I need to open a savings account.
1: Arey, Ujjivan Small Finance Bank.
0: Small bank?
1: Small. Privilege savings account, Garima savings account, Maxima business edge current account, Maxima business privilege, RDF. There's nothing small about them.
0: Okay.
1: Ujjivan, nothing small about us.
2: SBI Celebrations Unlimited. इस festive season को बनाए special car loan, personal loan, gold loan और loan against mutual funds पे special offers के साथ.
3: यार loan भूल गया. Mary.
4: Suggest a good bank ना.
1: Ujjivan Small Finance Bank.
3: Small Finance Bank.
1: Small. Working capital loan, home loan, loan against property, micro mortgage loan, gold loan, pre-owned car loan, two-wheeler loan.
5: There's nothing small about
1: us. Ujjivan, nothing small about us.
6: The world is changing. The headlines are shifting. The future is being written every day. From around the continents, Asia and India, WEON brings you the stories that shape our world. Grounded, geopolitical, global. WEON. World is one.
7: स्टॉक मार्केट पर आपको भी पैसा कमाना है लेकिन आपके मन में बहुत सारी कंफ्यूजन है. सबसे पहले आपको करना क्या है, क्वाला पर आपको जाना है जहां लिखा हुआ है आस्क एनीथिंग अबाउट मार्केट्स. यहां पर आप अपने मन का कोई भी सवाल पूछ सकते हैं. स्टॉक मार्केट से पैसे कैसे कमाएं, ये देखिए इसने पूरा तरीका बता दिया है और ये भी बता दिया है कि आपको करना क्या. आपको क्वाला ने ये तो बता दिया कि कैसे आप स्टॉक मार्केट से पैसा कमा सकते हैं, लेकिन ये मेरा सवाल था क्वाला से. तो अब आप जाइए qualaintel.com पर एंड ट्राई इट योरसेल्फ.
8: अगर आप अभी 25 के हैं, 40 साल में रिटायर करेंगे तो आपकी सैलरी के अकॉर्डिंग आप क्या इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो उसके लिए सिंपली मैं आ जाऊंगी qualaintel.com पर. क्वाला में अभी 25 साल की हूँ, 40 साल में मैं रिटायरमेंट प्लान कर रही हूँ और मेरी सैलरी 60,000 है. वैसे में आप मुझे एक इन्वेस्टमेंट प्लान बताइए कि आगे जाकर क्या सेविंग्स हो सकती है मेरे लिए. क्वाला ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि आप कैसे अपने पैसे को डिवाइड कर सकते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के जरिए ये दिखाया गया. तो आप सिर्फ मेरे बोलने पर मत जाइए, ट्राई इट योरसेल्फ.

0: I need to open a savings account.
1: अरे उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में खोल लो.
0: स्मॉल बैंक
1: स्मॉल प्रिविलेज सेविंग्स अकाउंट गरिमा सेविंग्स अकाउंट मैक्सिमा बिजनेस एज करंट अकाउंट बिजनेस मैक्सिमा बिजनेस प्रिविलेज आरडीए देयर इज नथिंग स्मॉल अबाउट देम.
0: ओके
1: उज्जीवन नथिंग स्मॉल अबाउट अस.
2: SBI Celebrations Unlimited. इस festive season को बनाए special car loan, personal loan, gold loan और loan against mutual funds पे special offers के साथ.
3: यार लोन भूल गया. मैडी जस्ट अ गुड बैंक ना.
1: उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक.
3: स्मॉल फाइनेंस बैंक
1: स्मॉल वर्किंग कैपिटल लोन होम लोन लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी माइक्रो मॉर्गेज लोन गोल्ड लोन प्री ओन कार लोन टू व्हीलर लोन.
4: देयर इज नथिंग स्मॉल अबाउट
1: अस. उज्जीवन नथिंग स्मॉल अबाउट अस.
5: द वर्ल्ड इज चेंजिंग. द हेडलाइंस आर शिफ्टिंग. द फ्यूचर इज बीइंग रिटन एवरी डे. From around the continents, Asia and India, WEON brings you the stories that shape our world. Grounded, geopolitical, global. WEON. World is one.
6: Know more, understand better, think ahead. Hello and a very warm welcome. You are watching Gravitas with me, Molly Gambhir. Get the facts, not the bombast. On the 26th of March, dynamic pricing, Baloch separatists. Gravitas cuts out the clutter. Gravitas keeps calm when others scream. Gravitas brings news to life. Weekdays, 9 p.m. IST, 3:30 p.m. GMT. Gravitas. Seeing is believing.

0: year that you really get to dress up in whatever type of character that you like and, you know, be yourself and the tricks and treats with it. It's a scary time of year, but it's really fun.
1: अगर आप अभी 25 के हैं, 40 साल में रिटायर करेंगे तो आपकी सैलरी के अकॉर्डिंग आप क्या इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो उसके लिए सिंपली मैं आ जाऊंगी qualaintel.com पर। क्वाला में अभी 25 साल की हूँ, 40 साल में मैं रिटायरमेंट प्लान कर रही हूँ और मेरी सैलरी 60,000 है। वैसे में आप मुझे एक इन्वेस्टमेंट प्लान

0: Maddie, I need to open a savings account.
1: अरे उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में खोल लो.
0: स्मॉल बैंक.
1: स्मॉल. Privilege savings account, Garima savings account, Maxima business, Edge current account, business, Maxima business, Privilege, RD, everything. There's nothing small about them.
0: Okay.
1: Ujjivan, nothing small about us.
2: SBI celebrations unlimited. Is festive season ko banaye special car loan, personal loan, gold loan or loan against mutual funds pe special offers ke saath.
3: यार लोन भूल गया
4: मैडी.
3: जस्ट अ गुड बैंक ना.
1: उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक.
3: स्मॉल फाइनेंस बैंक.
1: स्मॉल वर्किंग कैपिटल लोन, होम लोन, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, माइक्रो मॉर्गेज लोन, गोल्ड लोन, प्री ओन कार लोन, टू व्हीलर लोन.
5: देयर इज नथिंग स्मॉल अबाउट
1: अस. उज्जीवन, नथिंग स्मॉल अबाउट अस.
6: द वर्ल्ड इज चेंजिंग. द हेडलाइंस आर शिफ्टिंग. द फ्यूचर इज बीइंग रिटन एवरी डे. From around the continents, Asia and India, WEON brings you the stories that shape our world. Grounded, geopolitical, global. WEON. World is one.
7: Stock market se juda hua koi bhi aapke paas sawal hai, to aap is platform Qala se pooch sakte hain. Mere paas 10 lakh rupaye hain. Main stock market mein kahan lagaun? Ek hi window mein poore mere stock market ke investment ki कहानी बता दी. मतलब एक पूरी कुंडली क्रिएट कर दी. ये तो मेरा सवाल है. आप अपनी किसी भी कंफर्टेबल लैंग्वेज में सवाल पूछ सकते हैं.
8: दिस इज डिफेंस पल्स.
9: इट्स नॉट द सेम वर्ल्ड दैट इट यूज्ड टू बी 10 इयर्स बैक.

0: there that you really get to dress up in whatever type of character that you like and, you know, be yourself and the tricks and treats with it. It's a scary time of year, but it's really fun.
1: अगर आप अभी 25 के हैं, 40 साल में रिटायर करेंगे तो आपकी सैलरी के अकॉर्डिंग आप क्या इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो उसके लिए सिंपली मैं आ जाऊंगी qualaintel.com पर। क्वाला में अभी 25 साल की हूँ, 40 साल में मैं रिटायरमेंट प्लान कर रही हूँ और मेरी सैलरी 60,000 है। वैसे में आप मुझे एक इन्वेस्टमेंट प्लान बताइए कि आगे जाकर क्या सेविंग्स हो सकती है मेरे लिए। क्वाला ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि आप कैसे अपने पैसे को डिवाइड कर सकते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के जरिए ये दिखाया गया, तो आप सिर्फ मेरे बोलने पर मत जाइए, ट्राई इट योरसेल्फ।
2: स्टॉक मार्केट पर आपको भी पैसा कमाना है लेकिन आपके मन में बहुत सारी कंफ्यूजन है, सबसे पहले आपको करना क्या है, क्वाला पर आपको जाना है जहां लिखा हुआ है आस्क एनीथिंग अबाउट मार्केट्स। यहां पर आप अपने मन का कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, स्टॉक मार्केट से पैसे कैसे कमाएं। ये देखिए, इसने पूरा तरीका बता दिया है और ये भी बता दिया है कि आपको करना क्या। आपको क्वाला ने ये तो बता दिया कि कैसे आप स्टॉक मार्केट से पैसा कमा सकते हैं, लेकिन ये मेरा सवाल था क्वाला से। तो अब आप जाइए qualaintel.com पर एंड ट्राई इट योरसेल्फ।

0: मैडी, आई नीड टू ओपन अ सेविंग्स अकाउंट.
1: अरे उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में खोल लो.
0: स्मॉल बैंक,
1: स्मॉल प्रिविलेज सेविंग्स अकाउंट, गरिमा सेविंग्स अकाउंट, मैक्सिमा बिजनेस एज करंट अकाउंट, बिजनेस मैक्सिमा बिजनेस प्रिविलेज आरडीए, देयर इज नथिंग स्मॉल अबाउट देम.
0: ओके
1: उज्जीवन, नथिंग स्मॉल अबाउट अस.
2: SBI Celebrations Unlimited. इस festive season को बनाए special. Car loan, personal loan, gold loan और loan against mutual funds पे special offers के साथ.
3: The world is changing. The headlines are shifting. The future is being written every day. From around the continents, Asia and India, WEON brings you the stories that shape our world. Grounded, geopolitical, global. WEON. World is one.
0: Guys, मेरा तीसरा

0: स्टोर। अब एक्सपेंशन के लिए ना एक बैंक चाहिए, एनी सजेशंस? जीवन स्मॉल फाइनेंस मैन, स्मॉल
1: स्मॉल।
2: अब पूरी पिक्चर देख लो, लोन ऑप्शंस बिग,
3: सेविंग्स और एफडी पे इंटरेस्ट बिग, ब्रांच नेटवर्क बिग।
2: अगर स्मॉल होता तो मैं साइड में होता। और जीवन, नथिंग स्मॉल अबाउट अस।
4: दिस इज डिफेंस पल्स।
5: It's not the same world that it used to be 10 years back. Drones are how the wars are being fought right now.
6: But the role of infantry, the role of foot soldiers is not going to be changing, and neither is it changing in the Ukraine-Russia conflict.
7: Man unmanned mission together, very much like how the aircrafts and the drones work. They both have specific tasks that is there, and that's the naval battlefield that it is going to be.
8: So training our defense personnel is becoming more and more critical to adapt to the ever-changing battlefield. Data, software, algorithms are increasingly becoming key instruments to the warfare.
9: To sustain an aircraft, you need to be able to manufacture parts locally.
10: स्टॉक मार्केट पर आपको भी पैसा कमाना है, लेकिन आपके मन में बहुत सारी कंफ्यूजन है। सबसे पहले आपको करना क्या है, क्वाला पर आपको जाना है जहां लिखा हुआ है आस्क एनीथिंग अबाउट मार्केट्स। यहां पर आप अपने मन का कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। स्टॉक मार्केट से पैसे कैसे कमाएं? ये देखिए, इसने पूरा तरीका बता दिया है और ये भी बता दिया है कि आपको करना क्या। आपको क्वाला ने ये तो बता दिया कि कैसे आप स्टॉक मार्केट से पैसा कमा सकते हैं, लेकिन ये मेरा सवाल था क्वाला से। तो अब आप जाइए क्वाला इंटेल.com पर एंड ट्राई इट योरसेल्फ।

0: Maddie, I need to open a savings account.
1: Arey, Ujjivan Small Finance Bank mein khol lo.
0: Small bank?
1: Small. Privilege savings account, Garima savings account, Maxima business edge current account, business Maxima business privilege, RD, everything. There's nothing small about them.
0: Okay.
1: Ujjivan, nothing small about us.
2: SBI Celebrations Unlimited. इस festive season को बनाएं special. Car loan, personal loan, gold loan और loan against mutual funds पे special offers के साथ.
3: The world is changing. The headlines are shifting. The future is being written every day. From around the continents, Asia and India, WEON brings you the stories that shape our world. Grounded, geopolitical, global. WEON. World is one.
4: गाइस, मेरा तीसरा स्टोर अब एक्सपेंशन के लिए ना एक बैंक चाहिए. एनी सजेशंस?
5: जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक.
4: स्मॉल
6: स्मॉल,
7: आप पूरी पिक्चर देख लो. लोन ऑप्शंस बिग, सेविंग्स और एफडी पे इंटरेस्ट बिग, ब्रांच नेटवर्क बिग.
1: अगर स्मॉल होता तो मैं साइड में होता.
3: और जीवन, नथिंग स्मॉल अबाउट अस.
8: स्टॉक मार्केट से जुड़ा हुआ कोई भी आपके पास सवाल है तो आप इस प्लेटफॉर्म क्वाला से पूछ सकते हैं. मेरे पास 10 लाख रुपए हैं, मैं स्टॉक मार्केट में कहां लगाऊं? एक ही विंडो में पूरे मेरे स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टमेंट की कहानी बता दी, मतलब एक पूरी कुंडली क्रिएट कर दी. ये तो मेरा सवाल है. आप अपनी किसी भी कंफर्टेबल लैंग्वेज में सवाल पूछ

0: time of the year that you really get to dress up in whatever type of character that you like and, you know, be yourself and the tricks and treats with it. It's a scary time of year, but it's really fun.
1: स्टॉक मार्केट पर आपको भी पैसा कमाना है लेकिन आपके मन में बहुत सारी कंफ्यूजन है. सबसे पहले आपको करना क्या है, क्वाला पर आपको जाना है जहां लिखा हुआ है आस्क एनीथिंग अबाउट मार्केट्स. यहां पर आप अपने मन का कोई भी सवाल पूछ सकते हैं. स्टॉक मार्केट से पैसे कैसे कमाएं, ये देखिए इसने पूरा तरीका बता दिया है और ये भी बता दिया है कि आपको करना क्या. आपको क्वाला ने ये तो बता दिया कि कैसे आप स्टॉक मार्केट से पैसा कमा सकते हैं, लेकिन ये मेरा सवाल था क्वाला से. तो अब आप जाइए qualaintel.com पर एंड ट्राई इट योरसेल्फ.
2: Know more, understand better, think ahead. Hello and a very warm welcome. You are watching Gravitas with me, Molly Gambhir. Get the facts, not the bombast. On the 26th of March, dynamic pricing, Baloch separatists, Gravitas cuts out the clutter. Gravitas keeps calm when others scream. Gravitas brings news to life. Weekdays, 9 p.m. IST, 3:30 p.m. GMT. Gravitas, seeing is believing.
3: This is Defense Pulse.
4: It's not the same world that it used to be 10 years back. Drones are how the wars are being fought right now.
5: But the role of infantry, the role of foot soldiers is not going to be changing, and neither is it changing in the Ukraine-Russia conflict.
6: Man unmanned mission together, very much like how the aircrafts and the drones work. They both have specific tasks that is there.

0: time of the year that you really get to dress up in whatever type of character that you like and, you know, be yourself and the tricks and treats with it. It's a scary time of year, but it's really fun.
1: स्टॉक मार्केट से जुड़ा हुआ कोई भी आपके पास सवाल है तो आप इस प्लेटफॉर्म क्वाला से पूछ सकते हैं. मेरे पास 10 लाख रुपए हैं, मैं स्टॉक मार्केट में कहां लगाऊं? एक ही विंडो में पूरे मेरे स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टमेंट की कहानी बता दी, मतलब एक पूरी कुंडली क्रिएट कर दी. ये तो मेरा सवाल है. आप अपनी किसी भी कंफर्टेबल लैंग्वेज में सवाल पूछ सकते हैं.
2: अगर आप अभी 25 के हैं, 40 साल में रिटायर करेंगे तो आपकी सैलरी के अकॉर्डिंग आप क्या इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो उसके लिए सिंपली मैं आ जाऊंगी क्वाला इंटेल.com पर. क्वाला में अभी 25 साल की हूँ,

0: यार लोन भूल गया मैरी
1: जस्ट अ गुड बैंक ना
2: उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक
0: स्मॉल फाइनेंस बैंक
2: स्मॉल वर्किंग कैपिटल लोन होम लोन लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी माइक्रो मॉर्गेज लोन गोल्ड लोन प्री ओन कार लोन टू व्हीलर लोन
3: देयर इज नथिंग स्मॉल अबाउट अस
4: उज्जीवन नथिंग स्मॉल अबाउट अस
5: SBI Celebrations Unlimited. इस festive season को बनाए special. Car loan, personal loan, gold loan और loan against mutual funds पे special offers के साथ.
6: The world is changing. The headlines are shifting. The future is being written every day. From around the continents, Asia and India, WEON brings you the stories that shape our world. Grounded, geopolitical, global. WEON. World is one.

0: गाइस मेरा तीसरा स्टोर अब एक्सपेंशन के लिए ना एक बैंक चाहिए. एनी सजेशंस? जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक. स्मॉल
1: स्मॉल अब पूरी पिक्चर देख लो. लोन ऑप्शंस बिग, सेविंग्स और एफडी पे इंटरेस्ट बिग, ब्रांच नेटवर्क बिग. अगर स्मॉल होता तो मैं साड़ में होता. जीवन, नथिंग स्मॉल अबाउट अस.
2: The world is changing. The headlines are shifting. The future is being written every day. From around the continents, Asia and India, WEON brings you the stories that shape our world. Grounded, geopolitical, global. WEON. World is one.
3: In West Asia, every move shifts the world's balance. Wars, ceasefires, alliances. Power never stands still. Because what happens in West Asia never stays in West Asia. This is the West Asia Post.
4: अगर आप अभी 25 के हैं, 40 साल में रिटायर करेंगे तो आपकी सैलरी के अकॉर्डिंग आप क्या इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो उसके लिए सिंपली मैं आ जाऊंगी qualaintel.com पर. क्वाला में अभी 25 साल की हूँ, 40 साल में मैं रिटायरमेंट प्लान कर रही हूँ और मेरी सैलरी 60,000 है. वैसे में आप मुझे एक इन्वेस्टमेंट प्लान बताइए कि आगे जाकर क्या सेविंग्स हो सकती है मेरे लिए. क्वाला ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि आप कैसे अपने पैसे को डिवाइड कर सकते हैं. ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के जरिए ये दिखाया गया, तो आप सिर्फ मेरे बोलने पर मत जाइए. ट्राई इट योरसेल्फ.
5: Campaigns, elections, alliances, controversies, and power play. Stories that analyze global and domestic politics. A dedicated show with varied perspectives, expert take, citizens' voices, detailed ground reports, and in-depth coverage from political corridors of the world. This is Race to Power. Only on WEON.
6: Know more, understand better, think ahead. Hello and a very warm welcome. You are watching Gravitas with me, Molly Gambhir. Get the facts, not the bombast. On the 26th of March, dynamic pricing, Baloch separatists,

0: गाइस, मेरा तीसरा स्टोर। अब एक्सपेंशन के लिए ना एक बैंक चाहिए। एनी सजेशंस? जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। स्मॉल
1: स्मॉल, अब पूरी पिक्चर देख लो। लोन ऑप्शंस बिग, सेविंग्स और FDP इंटरेस्ट बिग, ब्रांच नेटवर्क बिग। अगर स्मॉल होता तो मैं साइड में होता। और जीवन, नथिंग स्मॉल अबाउट अस।
2: In West Asia, every move shifts the world's balance. Wars, ceasefires, alliances, power never stands still. Because what happens in West Asia never stays in West Asia. This is the West Asia Post.
3: Stock market se juda hua koi bhi aapke paas sawal hai to aap is platform Quala se pooch sakte hain. Mere paas 10 lakh rupaye hain. Main stock market mein kahan lagaun? एक ही विंडो में पूरे मेरे स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टमेंट की कहानी बता दी, मतलब एक पूरी कुंडली क्रिएट कर दी। ये तो मेरा सवाल है, आप अपनी किसी भी कंफर्टेबल लैंग्वेज में सवाल पूछ सकते हैं। स्टॉक मार्केट पर आपको भी पैसा कमाना है, लेकिन आपके मन में बहुत सारी कंफ्यूजन है। सबसे पहले आपको करना क्या है, क्वाला पर आपको जाना है, जहां लिखा हुआ है आस्क एनीथिंग अबाउट मार्केट्स। यहां पर आप अपने मन का कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। स्टॉक मार्केट से पैसे कैसे कमाएं, ये देखिए इसने पूरा तरीका बता दिया है, और ये भी बता दिया है कि आपको करना क्या। आपको क्वाला ने ये तो बता दिया कि कैसे आप स्टॉक मार्केट से पैसा कमा सकते हैं, लेकिन ये मेरा सवाल था क्वाला से। तो अब आप जाइए qualaintel.com पर एंड ट्राई इट योरसेल्फ।
4: Elections, alliances, controversies, and power play. Stories that analyze global and domestic politics. A dedicated show with varied perspectives, expert take, citizens' voices, detailed ground reports, and in-depth coverage from political corridors of the world. This is Race to Power, only on WeOn.

0: गाइस मेरा तीसरा स्टोर. अब एक्सपेंशन के लिए ना एक बैंक चाहिए. एनी सजेशंस? जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक. स्मॉल
1: स्मॉल.
2: अब पूरी पिक्चर देख लो. लोन ऑप्शंस बिग.
3: सेविंग्स और एफडी पे इंटरेस्ट बिग. ब्रांच नेटवर्क बिग.
2: अगर स्मॉल होता तो मैं साड़ में होता. और जीवन नथिंग स्मॉल अबाउट अस.
4: In West Asia, every move shifts the world's balance. Wars, ceasefires, alliances. Power never stands still. Because what happens in West Asia never stays in West Asia. This is the West Asia Post.
5: The architecture of war is changing. Geography is no longer a shield. The battlefield now stretches from sea to space. Meet the veterans, industry stalwarts, and innovators.
0: Maddie, I need to open a savings account.
2: Arre, Ujjivan Small Finance Bank ma khol lo.
0: Small bank?
2: Small. Privilege savings account, Garima savings account, Maxima business, Edge current account, business, Maxima business, Privilege, RDF, there's nothing small about them.
0: Okay.
2: Ujjivan, nothing small about us.
6: अगर आप अभी 25 के हैं, 40 साल में रिटायर करेंगे तो आपकी सैलरी के अकॉर्डिंग आप क्या इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो उसके लिए सिंपली मैं आ जाऊंगी qualaintel.com पर. क्वाला में अभी 25 साल की हूँ, 40 साल में मैं रिटायरमेंट प्लान कर रही हूँ और मेरी सैलरी 60,000 है. वैसे में आप मुझे एक इन्वेस्टमेंट प्लान बताइए कि आगे जाकर क्या सेविंग्स हो सकती है मेरे लिए. क्वाला ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि आप कैसे अपने पैसे को डिवाइड कर सकते हैं. ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के जरिए ये दिखाया गया, तो आप सिर्फ मेरे बोलने पर मत जाइए. ट्राई इट योरसेल्फ.
7: स्टॉक मार्केट से जुड़ा हुआ कोई भी आपके पास सवाल है तो आप इस प्लेटफॉर्म क्वाला से पूछ सकते हैं. मेरे पास 10,00,000 रुपए हैं, मैं स्टॉक मार्केट में कहां लगाऊं? एक ही विंडो में पूरे मेरे स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टमेंट की कहानी बता दी, मतलब एक पूरी कुंडली क्रिएट कर दी. ये तो मेरा सवाल है, आप अपनी किसी भी कंफर्टेबल लैंग्वेज में सवाल पूछ सकते हैं.

0: campaigns, elections, alliances, controversies, and power play. Stories that analyze global and domestic politics. A dedicated show with varied perspectives, expert take, citizens' voices, detailed ground reports, and in-depth coverage from political corridors of the world. This is Race to Power. Only on WEON.
1: स्टॉक मार्केट से जुड़ा हुआ कोई भी आपके पास सवाल है तो आप इस प्लेटफॉर्म क्वाला से पूछ सकते हैं। मेरे पास 10 लाख रुपए हैं, मैं स्टॉक मार्केट में कहां लगाऊं? एक ही विंडो में पूरे मेरे स्टॉक मार्केट के इन्वेस्ट

0: इन्वेस्टमेंट की कहानी बता दी, मतलब एक पूरी कुंडली क्रिएट कर दी। ये तो मेरा सवाल है, आप अपनी किसी भी कंफर्टेबल लैंग्वेज में सवाल पूछ सकते हैं।
1: अगर आप अभी 25 के हैं, 40

अगर आप अभी 25 के हैं, 40 साल में रिटायर करेंगे तो आपकी सैलरी के अकॉर्डिंग आप क्या इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो उसके लिए सिंपली मैं आ जाऊंगी qualaintel.com पर। क्वाला में अभी 25 साल की हूँ, 40 साल में मैं रिटायरमेंट प्लान कर रही हूँ और मेरी सैलरी 60,000 है। वैसे में आप मुझे एक इन्वेस्टमेंट प्लान बताइए कि आगे जाकर क्या सेविंग्स हो सकती है मेरे लिए। क्वाला ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि आप कैसे अपने पैसे को डिवाइड कर सकते हैं।

0: मार्केट पर आपको भी पैसा कमाना है, लेकिन आपके मन में बहुत सारी कंफ्यूजन है। सबसे पहले आपको करना क्या है, क्वाला पर आपको जाना है जहाँ लिखा हुआ है आस्क एनीथिंग अबाउट मार्केट्स। यहाँ पर आप अपने मन का कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, स्टॉक मार्केट से पैसे कैसे कमाएं। ये देखिए, इसने पूरा तरीका बता दिया है और ये भी बता दिया है कि आपको करना क्या। आपको क्वाला ने ये तो बता दिया कि कैसे आप स्टॉक मार्केट से पैसा कमा सकते हैं, लेकिन ये मेरा सवाल था क्वाला से। तो अब आप जाइए qualaintel.com पर एंड ट्राई इट योरसेल्फ। स्टॉक मार्केट से जुड़ा हुआ कोई भी आपके पास सवाल है तो आप इस प्लेटफॉर्म क्वाला से पूछ सकते हैं। मेरे पास 10 लाख रुपए हैं, मैं स्टॉक मार्केट में कहां लगाऊं? एक ही विंडो में पूरे मेरे स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टमेंट की कहानी बता दी, मतलब एक पूरी कुंडली क्रिएट कर दी। ये तो मेरा सवाल है, आप अपनी किसी भी कंफर्टेबल लैंग्वेज में सवाल पूछ सकते हैं।
1: Campaigns, elections, alliances, controversies, and power play. Stories that analyze global and domestic politics. A dedicated show with varied perspectives, expert take, citizens' voices, detailed ground reports, and in-depth coverage from political corridors of the world. This is Race to Power, only on WeOn.

0: campaigns, elections, alliances, controversies, and power play. Stories that analyze global and domestic politics. A dedicated show with varied perspectives, expert take, citizens' voices, detailed ground reports, and in-depth coverage from political corridors of the world. This is Race to Power. Only on WEON.
1: स्टॉक मार्केट से जुड़ा हुआ कोई भी आपके पास सवाल है तो आप इस प्लेटफॉर्म क्वाला से पूछ सकते हैं। मेरे पास 10 लाख रुपए हैं, मैं स्टॉक मार्केट में कहां लगाऊं? एक ही विंडो में पूरे मेरे स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टमेंट की कहानी बता दी, मतलब एक पूरी कुंडली क्रिएट कर दी। ये तो मेरा सवाल है, आप अपनी किसी भी कंफर्टेबल लैंग्वेज में सवाल पूछ सकते हैं।
2: This is Defense Pulse.
3: It's not the same world that it used to be 10 years back. Drones are how the wars are being fought right now.
4: But the role of infantry, the role

0: स्टॉक मार्केट से जुड़ा हुआ कोई भी आपके पास सवाल है तो आप इस प्लेटफॉर्म क्वाला से पूछ सकते हैं। मेरे पास 10 लाख रुपए है, मैं स्टॉक मार्केट में कहां लगाऊं? एक ही विंडो में पूरे मेरे स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टमेंट की कहानी बता दी, मतलब एक पूरी कुंडली क्रिएट कर दी। ये तो मेरा सवाल है, आप अपनी किसी भी कंफर्टेबल लैंग्वेज में सवाल पूछ सकते हैं।
1: Campaigns, elections, alliances, controversies, and power play. Stories that analyze global and domestic politics. A dedicated show with varied perspectives, expert take, citizens' voices, detailed ground reports, and in-depth coverage from political

0: time of the year that you really get to dress up in whatever type of character that you like and, you know, be yourself and the tricks and treats with it. It's a scary time of year, but it's really fun.
1: Know more, understand better, think ahead. Hello and a very warm welcome. You are watching Gravitas with me, Molly Gambhir. Get the facts, not the bombast. On the 26th of March, dynamic pricing, Baloch separatists. Gravitas cuts out the clutter. Gravitas keeps calm when others scream. Gravitas brings news to life. Weekdays, 9 p.m. IST, 3:30 p.m. GMT. Gravitas. Seeing is believing.
2: अगर आप अभी 25 के हैं, 40 साल में रिटायर करेंगे तो आपकी सैलरी के अकॉर्डिंग आप क्या इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो उसके लिए सिंपली मैं आ जाऊंगी qualaintel.com पर. क्वाला में अभी 25 साल की हूँ, 40 साल में मैं रिटायरमेंट प्लान कर रही हूँ और मेरी सैलरी 60,000 है. वैसे में आप मुझे एक इन्वेस्टमेंट प्लान बताइए कि आगे जाकर क्या सेविंग्स हो सकती है मेरे लिए. क्वाला ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि आप कैसे अपने पैसे को डिवाइड कर सकते हैं. ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के जरिए ये दिखाया गया, तो आप सिर्फ मेरे बोलने पर मत जाइए. ट्राई इट योरसेल्फ.
3: स्टॉक मार्केट से जुड़ा हुआ कोई भी आपके पास सवाल है तो आप इस प्लेटफॉर्म क्वाला से पूछ सकते हैं. मेरे पास 10 लाख रुपए हैं, मैं स्टॉक मार्केट में कहां लगाऊं? एक ही विंडो में पूरे मेरे स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टमेंट की कहानी बता दी, मतलब एक पूरी कुंडली क्रिएट कर दी. ये तो मेरा सवाल है, आप अपनी किसी भी कंफर्टेबल लैंग्वेज में सवाल पूछ सकते हैं.

0: are increasingly becoming key instruments to the warfare.
1: To sustain an aircraft, you need to be able to manufacture parts locally.
2: अगर आप अभी 25 के हैं, 40 साल में रिटायर करेंगे तो आपकी सैलरी के अकॉर्डिंग आप क्या इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो उसके लिए सिंपली मैं आ जाऊंगी qualaintel.com पर। क्वाला में अभी 25 साल की हूँ, 40 साल में मैं रिटायरमेंट प्लान कर रही हूँ और मेरी सैलरी 60,000 है। वैसे में आप मुझे एक इन्वेस्टमेंट प्लान बताइए कि आगे जाकर क्या सेविंग्स हो सकती है मेरे लिए। क्वाला ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि आप कैसे अपने पैसे को डिवाइड कर सकते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के जरिए ये दिखाया गया, तो आप सिर्फ मेरे बोलने पर मत जाइए, ट्राई इट योरसेल्फ।

मार्केट से जुड़ा हुआ कोई भी आपके पास सवाल है तो आप इस प्लेटफॉर्म क्वाला से पूछ सकते हैं। मेरे पास 10 लाख रुपए है, मैं स्टॉक मार्केट में कहां लगाऊं? एक ही विंडो में पूरे मेरे स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टमेंट की कहानी बता दी, मतलब एक पूरी कुंडली क्रिएट कर दी। ये तो मेरा सवाल है, आप अपनी किसी भी कंफर्टेबल लैंग्वेज में सवाल पूछ सकते हैं। स्टॉक मार्केट पर आप

0: campaigns, elections, alliances, controversies, and power play. Stories that analyze global and domestic politics. A dedicated show with varied perspectives, expert take, citizens' voices, detailed ground reports, and in-depth coverage from political corridors of the world. This is Race to Power, only on WEON.
1: स्टॉक मार्केट पर आपको भी पैसा कमाना है लेकिन आपके मन में बहुत सारी कंफ्यूजन है. सबसे पहले आपको करना क्या है, क्वाला पर आपको जाना है जहां लिखा हुआ है आस्क एनीथिंग अबाउट मार्केट्स. यहां पर आप अपने मन का कोई भी सवाल पूछ सकते हैं. स्टॉक मार्केट से पैसे कैसे कमाएं, ये देखिए इसने पूरा तरीका बता दिया है और ये भी बता दिया है कि आपको करना क्या है. आपको क्वाला ने ये तो बता दिया कि कैसे आप स्टॉक मार्केट से पैसा कमा सकते हैं, लेकिन ये मेरा सवाल था क्वाला से. तो अब आप जाइए क्वाला इंटेल.com पर एंड ट्राई इट योरसेल्फ.

0: year that you really get to dress up in whatever type of character that you like and, you know, be yourself and the tricks and treats with it. It's a scary time of year, but it's really fun.
1: Know more, understand better, think ahead. Hello and a very warm welcome. You are watching Gravitas with me, Molly Gambhir. Get the facts, not the bombast. On the 26th of March, dynamic pricing, Baloch separatists. Gravitas cuts out the clutter. Gravitas keeps calm when others scream. Gravitas brings news to life. Weekdays, 9 p.m. IST, 3:30 p.m. GMT. Gravitas. Seeing is believing.
2: स्टॉक मार्केट से जुड़ा हुआ कोई भी आपके पास सवाल है तो आप इस प्लेटफॉर्म क्वाला से पूछ सकते हैं. मेरे पास 10 लाख रुपए हैं, मैं स्टॉक मार्केट में कहां लगाऊं? एक ही विंडो में पूरे मेरे स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टमेंट की कहानी बता दी, मतलब एक पूरी कुंडली क्रिएट कर दी. ये तो मेरा सवाल है, आप अपनी किसी भी कंफर्टेबल लैंग्वेज में सवाल पूछ सकते हैं.

0: which is known for characters like Batman, Superman and Wonder Woman, is going dark with Clayface. This marks their latest reinvention under James Gunn. Sandra Hüller captivated attendees at the official UK premiere of Fatherland in London. Set in 1949, Fatherland follows man who visits Germany for the first time since fleeing the Nazis to accept the Goethe Prize, named after another of Germany's greatest writers. The movie earned Paolo Wischke his second Cannes Best Director Prize. The first trailer for a sweeping multi-part drama titled The Greatest is out. The series documents the monumental boxing victories and civil rights activism of Muhammad Ali. The series draws upon unpublished personal diaries and retrospective family interviews. The biographical series offers a fresh glimpse into the legacy of the sports star outside the sporting ring.
1: It's magic. You're an artist. And you don't teach Michelangelo how to paint. You give him a paintbrush, and you get out of the way.
0: That is all that we have in this segment. I am Ridham Sharma. Keep watching Beyond World is One for more news and updates.
2: मार्केट पर आपको भी पैसा कमाना है लेकिन आपके मन में बहुत सारी कंफ्यूजन है. सबसे पहले आपको करना क्या है, क्वाला पर आपको जाना है जहां लिखा हुआ है आस्क एनीथिंग अबाउट मार्केट्स. यहां पर आप अपने मन का कोई भी सवाल पूछ सकते हैं. स्टॉक मार्केट से पैसे कैसे कमाएं, ये देखिए इसने पूरा तरीका बता दिया है और ये भी बता दिया है कि आपको करना क्या. आपको क्वाला ने ये तो बता दिया कि कैसे आप स्टॉक मार्केट से पैसा कमा सकते हैं, लेकिन ये मेरा सवाल था क्वाला से. तो अब आप जाइए qualaintel.com पर एंड ट्राई इट योरसेल्फ.
3: अगर आप अभी 25 के हैं, 40 साल में रिटायर करेंगे तो आपकी सैलरी के अकॉर्डिंग आप क्या इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो उसके लिए सिंपली मैं आ जाऊंगी qualaintel.com पर. क्वाला में अभी 25 साल की हूँ, 40 साल में मैं रिटायरमेंट प्लान कर रही हूँ और मेरी सैलरी 60,000 है. वैसे में आप मुझे एक इन्वेस्टमेंट प्लान बताइए कि आगे जाकर क्या सेविंग्स हो सकती है मेरे लिए. क्वाला ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि आप कैसे अपने पैसे को डिवाइड कर सकते हैं. ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के जरिए ये दिखाया गया, तो आप सिर्फ मेरे बोलने पर मत जाइए, ट्राई इट योरसेल्फ.

0: 9 p.m. IST, 3:30 p.m. GMT. Gravitas. Seeing is believing. स्टॉक मार्केट से जुड़ा हुआ कोई भी आपके पास सवाल है तो आप इस प्लेटफॉर्म क्वाला से पूछ सकते हैं। मेरे पास 10 लाख रुपए हैं, मैं स्टॉक मार्केट में कहां लगाऊं? एक ही विंडो में पूरे मेरे स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टमेंट की कहानी बता दी, मतलब एक पूरी कुंडली क्रिएट कर दी। ये तो मेरा सवाल है, आप अपनी किसी भी कंफर्टेबल लैंग्वेज में सवाल पूछ सकते हैं।
1: This is Defense Pulse.
2: It's not the same world that it used to be 10 years back. Drones are how the wars are being fought right now.
3: But the role of infantry, the role of foot soldiers is not going to be changing, and neither is it changing in the Ukraine-Russia conflict.
4: Man unmanned mission together, very much like how the aircrafts and the drones work. They both have specific tasks that is there, and that's the naval battlefield that it is going to be.
5: So training our defense personnel is becoming more and more critical to adapt to the ever-changing battlefield. Data, software, algorithms are increasingly becoming key instruments to the warfare.
6: To sustain an aircraft, you need to be able to manufacture parts locally.
7: Campaigns, elections, alliances, controversies, and power play. Stories that analyze global and domestic politics. A dedicated show with varied perspectives. Expert take, citizens' voices, detailed ground reports, and in-depth coverage from political corridors of the world. This is Race to Power, only on WEON.
0: अगर आप अभी 25 के हैं, 40 साल में रिटायर करेंगे तो आपकी सैलरी के अकॉर्डिंग आप क्या इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो उसके लिए सिंपली मैं आ जाऊंगी qualaintel.com पर। क्वाला में अभी 25 साल की हूँ, 40 साल में मैं रिटायरमेंट प्लान कर रही हूँ और मेरी सैलरी 60,000 है। वैसे में आप मुझे एक इन्वेस्टमेंट प्लान बताइए कि आगे जाकर क्या सेविंग्स हो सकती है मेरे लिए। क्वाला ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि आप कैसे अपने पैसे को डिवाइड कर सकते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के जरिए ये दिखाया गया, तो आप सिर्फ मेरे बोलने पर मत जाइए, ट्राई इट योरसेल्फ।
7: Stock market. Only on WEON.

मार्केट पर आपको भी पैसा कमाना है, लेकिन आपके मन में बहुत सारी कंफ्यूजन है। सबसे पहले आपको करना क्या है, क्वाला पर आपको जाना है जहां लिखा हुआ है आस्क एनीथिंग अबाउट मार्केट्स। यहां पर आप अपने मन का कोई भी सवाल पूछ सकते हैं स्टॉक मार्केट

0: know more, understand better, think ahead. Hello and a very warm welcome. You are watching Gravitas with me, Molly Gambhir. Get the facts, not the bombast. On the 26th of March, dynamic pricing, Baloch separatists. Gravitas cuts out the clutter. Gravitas keeps calm when others scream. Gravitas brings news to life. Weekdays, 9 p.m. IST, 3:30 p.m. GMT. Gravitas. Seeing is believing.
1: अगर आप अभी 25 के हैं, 40 साल में रिटायर करेंगे तो आपकी सैलरी के अकॉर्डिंग आप क्या इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो उसके लिए सिंपली मैं आ जाऊंगी qualaintel.com पर। क्वाला में अभी 25 साल की हूँ, 40 साल में मैं रिटायरमेंट प्लान कर रही हूँ और मेरी सैलरी 60,000 है। वैसे में आप मुझे एक इन्वेस्टमेंट प्लान बताइए कि आगे जाकर क्या सेविंग्स हो सकती है मेरे लिए। क्वाला ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि आप कैसे अपने पैसे को डिवाइड कर सकते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के जरिए ये दिखाया गया, तो आप सिर्फ मेरे बोलने पर मत जाइए, ट्राई इट योरसेल्फ।
2: This is Defense Pulse.
3: It's not the same world that it used to be 10 years back.

0: of the year that you really get to dress up in whatever type of character that you like and, you know, be yourself and the tricks and treats with it. It's a scary time of year, but it's really fun.
1: स्टॉक मार्केट पर आपको भी पैसा कमाना है लेकिन आपके मन में बहुत सारी कंफ्यूजन है. सबसे पहले आपको करना क्या है, क्वाला पर आपको जाना है जहां लिखा हुआ है आस्क एनीथिंग अबाउट मार्केट्स. यहां पर आप अपने मन का कोई भी सवाल पूछ सकते हैं. स्टॉक